0: मुन्ना को बाकी है ना क्या देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वड़ा में क्या दक काफ़ूंग अता
2: मुन्ना थी है बुरको वेड़ना हिंग कमें ने अफन थी कंको लन्ना
1: थी को तुम हाउ दहाई रंगल लाए तीन मुन्ना एक ही आहो हाल बला फे मुन्ना रकां कंको देन्ना है दी मुन्ना वरहा उपावे

0: ऐसे भी कीर्त गुरुआ खेव गड़ी मिहार हगड़ी सतार मेट साड़ीस असिकुंत अडो समी गणी तिविराज जय गाडो अलगन में देंकुरियदाणी हिदायत के मगु मी प्रोग्राम आयु
1: हिदायत के मगुदाय